0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 7 2 3
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरबरम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: गणेशाय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः, ओम शरण्याय नमः, ओम वरेण्याय नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सुलभ्याय नमः, ओम सुलोकव्याहने नमः, ओम सुखासमुपनिष्ठाय नमः, ओम सुन्दराय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गर्भधारिणे नमः, ओम घनसारविलेपाय नमः, ओम खद्योताय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदचेष्टाय नमः, ओम महनीयगुणात्मने नमः, ओम महेशाय नमः, ओम छायापुत्राय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम शतपूर्णीरधारिणे नमः, ओम चरस्थिरस्वभावाय नमः, ओम अजञ्चलाय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम नीलाञ्जननिभाय नमः, ओम नामवराय नमः, ओम विद्याय नमः, ओम विधिरूपाय नमः, ओम विरोधाधारभूमये नमः, ओम भेदास्पदाय नमः, ओम नमः, ओम रोगभयाय नमः, ओम विपत्तिपरिशाय नमः, ओम शमनाय नमः, ओम धनवाय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम कूर्मांगाय नमः, ओम कुरूपिणे नमः, ओम कुत्साय, ओम बर्हि नमः, अविद्यानाशाय नमः, ओम विद्या विद्यास्वरूपिणे नमः, ओम आयुष्यकारणाय नमः, ओम आपदुद्धर्त्रये नमः, ओम विष्णुभक्ताय नमः, ओम वशिने नमः, ओम विविधागमवेदिने नमः, ओम विधिस्तुत्याय नमः, ओम वंद्याय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वज्रायस्ताय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम ज्येष्ठापत्नीसमे नमः, ओम श्रेय नमः, ओम मितपाशाय, ओम कष्टोन्मूलनाशकर्त्रये नमः, ओम पुष्टिकाय, ओम स्तुत्याय नमः, ओम स्तोत्रगम्याय नमः, ओम भक्तिवश्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानुपुत्राय नमः, ओम भव्याय नमः, ओम पावनाय नमः, पुण्याय नमः, ओम पते नमः, ओम तनुप्रकाशदेहाय नमः, ओम तामसाय नमः, ओम अशेषजनवन्द्याय नमः, ओम विशेषफलदायिने नमः, ओम वशीकृतजनेशाय नमः, ओम पशूनां पतये नमः, ओम खेचराय नमः, ओम खगेशाय नमः, ओम वीराम्बाय नमः, ओम काठिन्यमानसाय नमः, ओम आर्यगणस्तुत्याय नमः, ओम नीलच्छत्राय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम निपुणाय नमः, ओम गुणात्मने नमः, ओम ज्ञामयाय नमः, ओम वन्दनीयाय नमः, ओम धीराय नमः, ओम दिव्यदेहाय नमः, ओम दीनार्तिहरणाय नमः, ओम त्रैगुण्यनाशकराय नमः, ओम आर्यजनगण्याय नमः, ओम नमोकृतेय नमः, ओम परिपोषितभक्ताय नमः, ओम परमित्राय नमः, ओम भक्तसहिष्णुः नमः।
1: बधाई देते हैं थैंक्स गिविंग की अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को भी विश देते हैं, उनका बहुत बड़ा दिन है। तो थैंक गिविंग अभी 6 महीना होगा, एक महीना हो गया है और एक टर्की है जो टोरंटो में पार्कडेल एरिया में फ्री घूम रही है, कोई कोई कोई कभी कभी दिखाई देती है लोगों को, कहीं छुप जाती है। तो ये 680 न्यूज वाले जरूर बताते हैं रोज की टर्की इज ऑन द लूज।
2: श्री शनि अष्टोत्तर सतनामावली शराय नमः, ओम शांताय नमः।
1: गिविंग की एक्टिविटीज कर, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज चला है सभी जगह पे कर रहे हैं, अपनी फेयरनेस बता रहे हैं। इलेक्शन है, आपके जो डिबेट हो रहे हैं आप उनको देखो सुनो, आप जो सदस्य किस रेस में है, कौन से नॉमिनेशन में है, तो ये सारा कुछ आपको देखना है, करना है, सोचना है, जानना है, तो जरूर जानिए। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
2: वरणीयाय नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सुरलोकविहारिणे नमः, ओम सुखासनिष्ठाय नमः, ओम सुंदराय नमः।
1: जी हाँ, तो बात हो रही थी कि आपका लॉन्ग वीकेंड है, तो आपको अभी थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड है सभी के लिए, तो सभी अपने अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। बस एक बात ये है कि आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का से बचें। बहुत बार हम लोग ऐसे दोस्तों मित्रों के वहाँ चले जाते हैं, तो फिर जब वो ऑफर करते हैं ड्रिंक का, रिश्तेदारों में भी ना नहीं बोल सकते हैं, तो फिर बाद में गाड़ी चलाने के लिए भी अगर आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके घर आया है और पी लिया, तो फिर आपको उनको अपने घर पे ही रोक लेना चाहिए, या फिर उनको टैक्सी करके भेज दो, या कैसे भी करके आप उनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करें, उनका लाइसेंस बचाएं, क्योंकि जहाँ पे लाइसेंस के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये जो ड्रिंकिंग है वो उसका फिर वो जो किसी दोस्त मित्र के साथ, रिश्तेदार के साथ जो समय बिताया है, उसकी इतनी बड़ी किसी को पेनल्टी पड़ जाए तो आपको सोचना चाहिए, वर्थ नहीं है। तो आप जरूर इस चीज के बारे में सोचें और फिर आगे चल करके अपना जो भी डिसीजन है आप लें। तो अगर आपका कोई दोस्त मित्र आपके घर आया है और आपने उनको जरूर आपकी अगर आप ऐसा करते हैं, उनका उनका भला करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाते हो आप। आइए आपको सुनाते हैं ये गीत, मोहब्बत के अच्छे लम्हे।
0: चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है,
1: मोहब्बत
0: प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आंखें खुली हो या

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे। कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आप अपने घर में फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप के लिए अगर आपने टीवी लेके देना है, किसी को दिवाली गिफ्ट लेके देना है, तो आप आज ही उनको कॉल कर लीजिए। छोटी सी किचनेट सेटअप करवानी है 905-799-0045 9579-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से इस हफ्ते, तो उनको भी बहुत सारी बधाई हो। और साथ साथ ये भी है कि सभी मंदिरों में जागरण हो गए, चौकियां होंगी और बहुत ये जो दिन होते हैं वो जो होते हैं बहुत बढ़िया दिन होते हैं। तो आप जरूर अपनी माँ के आशीर्वाद पाइएगा, जरूर जाइएगा जहाँ जहाँ भी आपको टाइम मिले। जहाँ पे सभी लोग नौकरियाँ करते हैं तो बस फिर भी टाइम लोग निकाल लेते हैं। बड़ी बड़ी चौकियाँ होती हैं, बड़े बड़े जागरण होते हैं, लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भावना है। तो आपको मंदिर में जा सकते हो और सभी मंदिरों में प्रोग्राम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए जाएंगे। और अभी महाउत्सव सीजन है तो आप जरूर इसमें शामिल होइए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत बढ़िया महसूस होता है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। जब आप कम्युनिटी में जाते हो, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, चाहे आपको आपके दिमाग में कितनी उदासी हो, परेशानी हो, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए आप थोड़ा इस गम को भुलाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए जरूर बाहर निकलें, कम्युनिटी में शामिल हो जाएं।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली बॉक्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS biggest and original divine shop, India Sajavat and Puja Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458.
1: जी हाँ, तो अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि मास्टर कल्याण डिपू गोर रोड पे मौजूद हैं। तो आपको किसी तरह के भी कार वैन ट्रक का आपको कोलिजन का काम करवाना है तो आप mastercollisiondepot.com पर जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। बहुत आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए बना देते हैं, तो मास्टर कोलिजन डिपो। अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, तो आप उनकी सेवाएं जरूर लीजिए। तो आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए 416-524-4 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली बॉक्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS biggest and original divine shop, India Sajavat and Puja Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अगर आपने अभी प्रोग्राम शुरू किया है तो आपको बताते चले कि अभी नवरात्रे जो है शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, शारदीय नवरात्रे। आइए सुनिए ये गीत, बहुत प्यारा सा गीत।
2: किसी रोज तुमसे
1: प्रदेश के
2: मुलाकात होगी,
1: किसी
2: किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात।

दिल से मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है कब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की दिवाली सेल्स का स्पेशल फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पर आप कॉल कर सकते हो। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लेके 1,00,000 डॉलर तक। तो फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू। हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुम हैमिल्टन में लोकल रहते हो तो साढ़े को आओ, साड़ी लोकल टीम थोड़ी सिचुएशन के हिसाब नाल सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। तो जे तुहानू नवे टायर की लोड़ है तो वह भी मिलेंगे। चार टायर का सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जल्द तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ। सानू सिर्फ ये दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, पते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, 500 की सीधी बचत। तो फिर देर किस गल की, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3340, दोबारा सुनो 365-384-3340। बीवीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूविंग होनी है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिए। HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि उनके बहुत सारी टीम्स हैं तो बहुत बढ़िया सर्विसेज आपको देते हैं। तो आज ही ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-704 416-524-6704। आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आप लंदन में रहते हो, आप बहुत ही खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो वाले खुल चुके हैं गोर रोड पे। तो वहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। आप जानकारी के लिए आप जाइएगा mastercollisiondepot.com और फिर आप कॉल कर लीजिएगा उनको। तो और आपको आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं मास्टर कलिजन डिपो वाले। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है बढ़िया क्वालिटी का, आपको लाइव कुकिंग चाहिए तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट भी पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो पहले से, मिठाइयाँ करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए बुकिंग कर लो 905-814-1703 905-814-1703 पे कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला। तो अब जाते जाते पंजाबी का तड़का लगाने वाली हूँ। तो आपके लिए लॉन्ग वीकेंड है, तो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक, आपको रोमांटिक सा म्यूजिक आपके लिए सुनाया है। तो आइए आपके लिए दिलजीत दोसांझ का गीत हो जाए तो क्या बात है। तो जरूर आप पसंद करेंगे उनका, उनके बहुत सारे नए। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर नया टीवी लेना है तो आप चाहिएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। मूव करना है तो एच के मूवर्स का मास्टर कोलिजन डिपो है। और अगर आपने मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है करवा चौथ दिवाली के लिए, तो आपके लिए समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री मौजूद है। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सवादा भला। हैव ए सेफ वीकेंड एंड एंजॉय।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: Instagram मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5050 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: Hi, taking a corral. How can I help you today?

पातुतिशां पतिः पादौ पातु दिलमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यं अभेद्य वज्रसन्निभं सर्वरोगभयादिभ्यः।

सर्वेशा य नमः ॐ शनैश्चराय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॐ शरण्याय नमः ॐ वरेण्याय नमः ॐ सर्वेशाय नमः।

0: ओम गणसारम देवाय नमः, ओम खद्योताय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदचेष्टाय नमः, ओम महनीय गुणात्मने नमः, जगत नमः, ओम महेशाय नमः, ओम छाया पुत्राय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम शतपूर्णी रधारिणे नमः, ओम चरस्थिरस्वभावाय नमः, ओम अजंचलाय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम नीलांचन निभाय नमः, ओम नामवराय नमः, ओम विद्याय नमः, ओम विधिरूपाय नमः, ओम विरोधाधार भूमये नमः, ओम वेदास्पद नमः, ओम आय नमः, ओम सरोगभय नमः, ओम विपत्तपरिषाय नमः, ओम शमंजय नमः, ओम धनमाय नमः, ओम पुनाय नमः, ओम कूर्मांगाय नमः, ओम कुरूपिणे नमः, ओम कुत्सा ओम बर्हि नमः, अविद्यानाशाय नमः, ओम विद्या विद्यास्वरूपिणे नमः, ओम आयुष्यकारणाय नमः, ओम आपदुद्धर्त्रये नमः, ओम विष्णुभक्ताय नमः, ओम वशिने नमः, ओम विविधागमवेदिने नमः, ओम विधिस्तुत्याय नमः, ओम वंद्याय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वज्रायस्ताय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम ज्येष्ठापत्नीसमे नमः, ओम श्रेय नमः, ओम मितपाश, ओम कष्टोत्तनाशकर्त्रे नमः, ओम पुष्टिका, ओम स्तुत्याय नमः, ओम स्तोत्रगम्याय नमः, ओम भक्तिवश्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानुपुत्राय नमः, ओम भव्याय नमः, ओम पावनाय नमः, पुण्याय नमः, ओम पते नमः, ओम तनुप्रकाशदेहाय नमः, ओम तामसाय नमः, ओम अशेषजनवन्द्याय नमः, ओम विशेषफलदायिने नमः, ओम वशीकृतजनेशाय नमः, ओम पशूनां पतये नमः, ओम खेचराय नमः, ओम खगेशाय नमः, ओम नीलाम्बाय नमः, ओम काठिन्यमानसाय नमः, ओम आर्यगणस्तुत्याय नमः, ओम नीलच्छत्राय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम निपुणाय नमः, ओम गुणात्मने नमः, ओम ज्ञामयाय नमः, ओम वन्दनीयाय नमः, ओम धीराय नमः, ओम दिव्यदेहाय नमः, ओम दीनार्तिहरणाय नमः, ओम त्रैगुण्यनाशकराय नमः, ओम आर्यजनगण्याय नमः, ओम नमोकृतेय नमः, ओम परिपोषितभक्ताय नमः, ओम परमीतराय नमः, ओम भक्तसहिष्णुताय नमः।
1: बधाई देते हैं थैंक्स गिविंग की अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को भी विश देते हैं, उनका बहुत बड़ा दिन है तो थैंक गिविंग। अभी 6 महीना होगा, 1 महीना हो गया है और एक टर्की है जो टोरंटो में पार्कडेल एरिया में फ्री घूम रही है, कोई कभी कभी दिखाई देती है लोगों को, कहीं छुप जाती है। तो ये 680 न्यूज वाले जरूर बताते हैं रोज की टर्की इज ऑन द लूज।
2: श्री शनि अष्टोत्तर सतनामावली शराय नमः, ओम शांताय नमः।
1: गिविंग की एक्टिविटीज कर, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज चला है सभी जगह पे अपनी बता रहे हैं, इलेक्शन है, आपके जो डिबेट हो रहे हैं आप उनको देखो सुनो, आप जो सदस्य किस रेस में है, कौन से नॉमिनेशन में है, तो ये सारा कुछ आपको देखना है, करना है, सोचना है, जानना है, तो जरूर जानिए। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
2: वरणीयाय नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम सौम्याय नमः, सुरभो ओम सुरलोक विहारिणे नमः, ओम सुखासनिष्ठाय नमः, ओम सुंदराय नमः।
1: जी हाँ, तो बात हो रही थी कि आपका लॉन्ग वीकेंड है, तो आपको अभी थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड है सभी के लिए, तो सभी अपने अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। बस एक बात ये है कि आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का से बचें। बहुत बार हम लोग ऐसे दोस्तों मित्रों के वहाँ चले जाते हैं तो फिर जब वो ऑफर करते हैं ड्रिंक का, रिश्तेदारों में भी ना नहीं बोल सकते हैं, तो फिर बाद में गाड़ी चलाने के लिए अभी अगर आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके घर आया है और पी लिया, तो फिर आपको उनको अपने घर पे ही रोक लेना चाहिए, या फिर उनको टैक्सी करके भेज दो, या कैसे भी करके आप उनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करें, उनका लाइसेंस बचाएं, क्योंकि जहाँ पे लाइसेंस के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये जो ड्रिंकिंग है वो उसका फिर वो जो किसी दोस्त मित्र के साथ रिश्तेदार के साथ जो समय बिताया है उसकी इतनी बड़ी किसी को पेनल्टी पड़ जाए तो आपको सोचना चाहिए, वर्थ नहीं है। तो आप जरूर इस चीज के बारे में सोचें और फिर आगे चल करके अपना जो भी डिसीजन है आप लें। तो अगर आपका कोई दोस्त मित्र आपके घर आया है और आपने उनको जरूर आपकी अगर आप ऐसा करते हैं उनका उनका भला करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाते हो आप। आइए आपको सुनाते हैं ये गीत, मोहब्बत के अच्छे लगे।
3: चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है,
1: मोहब्बत
3: प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।
4: आंखें खुली हो या

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे। कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4464, 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आप अपने घर में फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप के लिए अगर आपने टीवी लेके देना है, किसी को दिवाली गिफ्ट लेके देना है, तो आप आज ही उनको कॉल कर लीजिए। छोटी सी किचनेट सेटअप करवानी है 905-799-0045, 5799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से इस हफ्ते, तो उनको भी बहुत सारी बधाई हो। और साथ साथ ये भी है कि सभी मंदिरों में जागरण हो गए, चौकियां होंगी और बहुत ये जो दिन होते हैं वो जो होते हैं बहुत बढ़िया दिन होते हैं। तो आप जरूर अपनी माँ के आशीर्वाद पाइएगा, जरूर जाइएगा जहाँ जहाँ भी आपको टाइम मिले। जहाँ पे सभी लोग नौकरियाँ करते हैं तो बस फिर भी टाइम लोग निकाल लेते हैं। बड़ी बड़ी चौकियाँ होती हैं, बड़े बड़े जागरण होते हैं, लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भावना है। तो आपको मंदिर में जा सकते हो और सभी मंदिरों में प्रोग्राम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए जाएंगे। और अभी महाउत्सव सीजन है तो आप जरूर इसमें शामिल होइए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत बढ़िया महसूस होता है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है जब आप कम्युनिटी में जाते हो, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो। चाहे आपको आपके दिमाग में कितनी उदासी हो, परेशानी हो, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा इस गम को भुलाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए जरूर बाहर निकलें, कम्युनिटी में शामिल हो जाएं।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है, तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458.
1: जी हाँ, तो आप अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि मास्टर क्लीन डिपो गोर रोड पे मौजूद हैं। तो आपको किसी तरह के भी कार वैन ट्रक का कोलिजन का काम करवाना है तो आप masterclisiondepot.com पर जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए, बहुत आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए बना देते हैं। तो मास्टर क्लीजन डिपो, अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, तो आप उनकी सेवाएं जरूर लीजिए। तो आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए 416-524-4 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है, तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अगर आपने अभी प्रोग्राम शुरू किया है तो आपको बताते चलें कि अभी नवरात्र जो है शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, शारदीय नवरात्र। आइए सुनिए ये गीत, बहुत प्यारा सा गीत।
2: किसी रोज तुमसे
1: प्रदेश के
2: मुलाकात होगी,
1: Thank you.
2: किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की दिवाली सेल का स्पेशल फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पर आप कॉल कर सकते हो। हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन। सिर्फ 5,000 तो लेके 1,00,000 डॉलर तक। तो फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू। ते हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ। साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन के हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवे टायर की लोड है तो वह भी मिलणगे। चार टायर का सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर। जल्द तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ। सानू सिर्फ ये दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है। पते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, 500 की सीधी बचत। तो फिर देर किस गल की, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3340। दोबारा सुनो 365-384-3340। बीवीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूविंग होनी है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिए। HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि उनके बहुत सारी टीम्स हैं तो बहुत बढ़िया सर्विसेज आपको देते हैं। तो आज ही ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-7004 416-524-6704। आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आप लंदन में रहते हो, आप बहुत ही खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो वाले खुल चुके हैं गोर रोड पे। तो वहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। आप जानकारी के लिए आप जाइएगा mastercollisiondepot.com और फिर आप कॉल कर लीजिएगा उनको। तो और आपको आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं मास्टर कलिजन डिपो वाले। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है बढ़िया क्वालिटी का, आपको लाइव कुकिंग चाहिए तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट भी पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो पहले से। मिठाइयाँ करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए बुकिंग कर लो 905-814-1703 905-814-1703 पे कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तो अब जाते जाते पंजाबी का तड़का लगाने वाली हूँ। तो आपके लिए लॉन्ग वीकेंड है, तो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक आपको, रोमांटिक सा म्यूजिक आपके लिए सुनाया है। तो आइए आपके लिए दिलजीत दोसांझ का गीत हो जाए तो क्या बात है। तो जरूर आप पसंद करेंगे उनका, उनके बहुत सारे नए। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर नया टीवी लेना है तो आप चाहिएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। मूव करना है तो एच के मूवर्स का नाम है, मास्टर कोलिजन डिपो है। और अगर आपने मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है करवा चौथ दिवाली के लिए तो आपके लिए समोसा एंड स्वीट पैस्ट्री मौजूद है। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने स्वादा भला, हैव ए सेफ वीकेंड एंड एंजॉय।

छोड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रांड्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 और 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
6: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स, बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे, या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कांटेक्ट करो 6474-0088-62।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: सात से आठ तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीआं ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 और 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
4: If you want to know about Supervisor Insurance and their best rates, best plan and best options for your parents and grandparents on 40-45% discount, so contact today 647-400-6862. Harjinder Kul.

0: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-88-12 647-400-6862
1: गार्निशमेंट पावर ऑफ सेल नोटिस बैंक वालों पैसे दी मंग उन्हें ही सानू कॉल करो फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग कर्जा माफ कराओ 100% मानसिक शांति पाओ कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100 कर्जे तो परेशान असी करांगे काम आसान 416-502-3100
0: इश्तिहार है तो व्यापार है अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-88-12 647-400-6862

0: राजा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: मैं हरसिमरन सिंह। साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं। वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: songs ते गपशप द फ्यूजन
1: देसी फ्यूजन
0: स्पोर्ट्स ते सॉन्ग्स द फ्यूजन
1: देसी फ्यूजन
0: सॉन्ग्स ते न्यूज़ द फ्यूजन
1: तुसी सुन रहे हो देसी फ्यूजन सुनते रहो देसी फ्यूजन
0: ओहो ओ सुनते हो जी आ देखो मेरा लैपटॉप बिल्कुल नहीं चल रहा इतना रुक रुक के चल रहा मैं तो परेशान हो गई हूं
1: तू घबरानी क्यों है मैं आज ही तेरा लैपटॉप लिंकड अप सेलफोन्स एंड कंप्यूटर्स वाले को लेके जाना ओते लैपटॉप बिल्कुल नवा ते सुपर स्पीड वाला कर देंगे लिंकड अप वाले सेम डे फिक्स करके देंदे ने चाहे स्लो चलता होवे स्क्रीन टूट गई बैटरी लॉस चार्जर तो उतार के बंद हो जाता है नो प्रॉब्लम
0: जे तुसी भी अपना लैपटॉप या फोन फिक्स करवाना चाहते हो तो पहुंचो लिंकड अप मिसिसागा जो दो लोकेशंस ने कॉल 6475100061 ओहो ओ सुनते हो जी आ देखो मेरा लैपटॉप बिल्कुल नहीं चल रहा इतना रुक रुक के चल रहा मैं तो परेशान हो गई हूं
1: तू घबरानी क्यों है मैं आज ही तेरा लैपटॉप लिंकड अप सेलफोन्स एंड कंप्यूटर्स वाले को लेके जाना ओते लैपटॉप बिल्कुल नवा ते सुपर स्पीड वाला कर देंगे लिंकड अप वाले सेम डे फिक्स करके देंदे ने चाहे स्लो चलता होवे स्क्रीन टूट गई बैटरी लॉस चार्जर तो उतार के बंद हो जाता है नो प्रॉब्लम
0: जे तुसी भी अपना लैपटॉप या फोन फिक्स करवाना चाहते हो तो पहुंचो लिंकड अप मिसिसागा जो दो लोकेशंस ने कॉल 6475100061
2: हां जी दोस्तों मैं थोड़ा दोस्त ते होस्ट नवजोत सिंह ते थोड़ा स्वागत है देसी फ्यूजन रेडियो दे उत्ते ते थोड़ा ते मेरा साथ रहूगा पूरे 3 बजे तक गल्ला बत्ता करांगे कुछ स्पोर्ट्स दियां नाले दवांगे थोनू ग्रोसरी ते डीलां नाले थोनू दवांगे सेलफोन बारे जानकारी ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋਸਰਸ ਗੋਰਵੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋਸਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ 24 ਆਵਰਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੂਸ ਬਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ 24 ਆਵਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਗੋਰਵੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 905-794-8600

ओके मित्रों, एक गल थोड़े नाल होर करिए कि जे गुरबाणी रेडियो तुसी लैना चाहुंदे हो, गुरबाणी रेडियो सारे महंगे हो गए आ, क्योंकि गुरबाणी रेडियो च पैंदी है माइक्रो SD जिहड़ी कि हैगी है स्टोरेज। जिद्दण दी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस इन्नी पॉपुलर हुई आ, उहदे विच स्टोरेज यूज़ हुंदी आ ज़्यादा, सो स्टोरेज वालियां सारे चीज़ां महंगीआं हो गईआं। जिद्दां एप्पल ने हर फोन के प्राइस चकते $150-$200 है ना, आईपैड के प्राइस चक के $150-$200। सैमसंग ही एक है जिन्होंने अपने फोन महंगे नहीं किए, बाकी सारे ने करते। सो जिहड़ी भी चीज़ स्टोरेज पैंदी है, कंप्यूटर लैपटॉप महंगे हो गए। सो गुरबाणी रेडियो भी मार्केट के इस टाइम बहुत महंगे हो गए, लेकिन लिंकड अप स्टोर ते रॉयल इंडिया ग्रोसर्स दोनों ते ही थोनू गुरबाणी रेडियो मिल जाता 25-1-45-2। किन्ने दा? 25-1-45-2। ग्रोसरी स्टोर तो चकने आ, चाहे तुसी लैने आ लिंकड अप स्टोर तो, दोनों जगह अवेलेबल ने। ग्रोसरी स्टोर हैगे आ मिसी सागा च 3050 आर्टिजन ड्राइव के उत्ते, ब्रैम्पटन के 10950 गोरवे ड्राइव के उत्ते। तो जे तुसी सैलफोन स्टोर से पिक करने आ तां तुसी पिक कर सकते हो 34 ब्रिस्टल रोड ईस्ट मिसी सागा, या फिर 550 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन के। सो गुरबाणी रेडियो चार लोकेशन से तुहाडे लई अवेलेबल ने। फुटबॉल देखण दे ते जे तुसीं शौकीन हो तां फुटबॉल दे विच प्रीमियर लीग बड़ी टॉप दी इस टाइम चल रही है। मैनचेस्टर सिटी ते वैसे तां लगे होए ने 115 दोष, ते ओह पूरा रौला इस टाइम पिया होया। उन्होंने अपील भी करनी आ उहदी, ते कहिंदे आ कि उन्हां दे पॉइंट डिडक्ट करने आ, लेकिन सिटी दे प्लेयरां ते फैनस नूं, जिहड़े 2-4 फैन उन्हां दे हैगे आ, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं। अज्ज उन्हां दा मैच सीगा लिवरपूल दे नाल, ते उन्हां ने पूरा उत्थे आ के रौला रप्पा पाया, ते 3-0 दे नाल लिवरपूल नूं ठोक के हराया। कल आर्सनल का मैच सीगा, बड़े औखे जितते ने 2-1 तो। रियाल मैड्रिड भी कल ला लीगा दे विच 1-0 तो जित गई। दूजा गोल भी करता सीगा विनीशियस जूनियर ने, नाले तां गोल करता डिस अलाउ, नाले विनीशियस जूनियर नूं मिल गया रैड कार्ड, लाल वाला कार्ड, क्योंकि उन्हें दूजे प्लेयर के बाल जिहड़े सीगे खिचते। मैनचेस्टर यूनाइटेड ते टॉटनम हॉटस्पर का मैच सीगा कल, ओह 1-1 नाल होया ड्रॉ। ला लीगा दे विच बारसलोना ने मैच जितया 3-0 तो, वह भी कल सीगा मैच। EPL का टेबल पूरा टाइट चल रहा है इस टाइम, अपनी फेवरेट टीम जी है आर्सनल गनर्स, ये गनर्स वो है दूजे नंबर पर, 115 चार्ज FC हैगी है टॉप पर, जी की हैगी है मैनचेस्टर सिटी। तो जो तुम फुटबॉल देखने के शौकीन हो, सॉकर पूरी जोर जोर से चल रही है, तो जो अमेरिकन फुटबॉल देखने के शौकीन हो तो थोड़ा पता अज गेम्स ने, गो बिल्स गो।

इंडस्ट्रियल वेयर हाउस फॉर सेल इन मिसिसागा। हाँ जी, इंडस्ट्रियल वेयर हाउस फॉर सेल इन मिसिसागा। नवजोत सिंह फ्रॉम बिपरेल्टी, मैनू 17 साल हो गए रियल एस्टेट करते, अगले साल अप्रैल च हो जाने 18 साल। सो जे तुसी इंडस्ट्रियल वेयर हाउस लेने आ सेल दे उत्ते, अपने कोल हैगे ऑलरेडी बने हुए ने, 3 डिफरेंट साइट्स हैगियां ने, कुछ हाईवे 401 दे नेड़े ने, कुछ हाईवे 403 दे नेड़े ने इन मिसिसागा। 2000 स्क्वायर फिट तो लैके 10000 स्क्वायर फिट तक दियां ऑप्शनस अवेलेबल ने। जे तुसी अपने मूव इन होने दे लई लैणा वेयर हाउस, ते तुहाडा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ते बिजनेस दे वधिया फाइनैंशियल ने, तो 90% तक थोनू फाइनैंसिंग भी मिल सकती है। उहदे लई तुसी टैक्सट मैसेज भेजना वेयर हाउस, थोड़े बिजनेस का नाम, तो किन्ने स्क्वायर फिट चाहिए, नंबर टैक्सट करन दे लई 6477662600।

ओके मित्रों, 2:54 हो गए, पता ही नहीं लग गया। टेम्परेचर बाहर हैगा 17 डिग्री, ते ट्रैफिक हो रहा पूरा जाम क्योंकि पै रहा थोड़ा जा मी। एनीवेज, अपना प्रोग्राम चलता है एवरी संडे दोपहरे 2 to 3 तक AM 5:30 ते नाले टिकटॉक ते लाइव। टिकटॉक से तुम्हें बाद चो भी कोई मैसेज करना था द किंग नवजोत सिंह, टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब तिना का मेरा सेम अकाउंट है। मैं अमेजोन बारे वीडियो पाना रहना, ऑनलाइन बिजनेस तुम कि कर सकते हो बारे वीडियोज इनफॉर्मेशन अपना फ्री च पाई दी आ, किसी का कोर्स कूर्स नहीं लैना। तुम ने रेडियो तो गाने शाने सुनने, कमेंट कर सकते हो टिकटॉक से कहड़ा गाँव सुनना आप ला देंगे। एडवरटाइजमेंट तुम्हें करनी है, जे तुम टॉप के बंदे हो ऑनेस्टी काम करोगे तो थोड़ी एक बार फ्री च एडवरटाइजमेंट भी करूँगा अपने स्टोर के अपने रेडियो के उत्ते। मैं टिकटॉक से रीच आउट कर लेना द किंग नवजोत सिंह, स्पैशली जे तुम इंश्योरेंस ब्रोकर हो, थोड़े को होम या ऑटो इंश्योरेंस तुम करते हो वधिया करके दोगे कस्टमरस की, तो अपने को टिकटॉक के उत्ते आप अनाउंस किया ऑलरेडी कस्टमर आ गए थे। सो जे तुम ऑनेस्टी काम करना है तो मैंने वो टिकटॉक के उत्ते रीच आउट कर लियो। सैलफोन तुम्हें ठीक करवाना, सैलफोन के तुम टॉप के प्लैन लेने आ। इंडिया जाने के लिए थोड़ा सिम कार्ड चाहिए, गारमिन के GPS चाहिए ने, ब्लू पैरट के हैडसैट चाहिए ने, एयरपॉड चाहिए ने, फोन चाहिए ने कैश डील के उत्ते। सारिया चीज़ा मिलती ने लिंकड अप स्टोर के उत्ते। फोन नंबर 6475100061 6475100061। ओकविल दे विच तुसी घर बनाउणा ढा के इनवैसटमेंट के लिए या परसनल रहने के लिए, उहदे विच मेरी टीम तुहानू हैल्प कर सकती है। बिप रियल्टी ब्रोकरेज 6477662600 6477662600। इंडस्ट्रियल वेयरहाउस असीं सेल ते लैणे आ मिसिसागा दे विच, उहदे लई 90% तक की फाइनैंसिंग भी अवेलेबल है, उहदे लई भी तुसी कॉल कर सकते हो 6477662600। टोरोंटो डाउनटाउन लैजलीविल एरिया दे विच जे तुसीं कमर्शियल ते रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे हो, क्वीन स्ट्रीट दे उत्ते अपने कोल बहुत वधिया लिस्टिंग हैगी आ, जिथे तुहानू वेंडर टेकबैक मॉर्गेज भी मिल सकती है अप टू 80%। सो उहदे च तुसीं इंट्रस्टिड हो, मिलियन डॉलर की रेंज दे विच तुहानू प्रोडक्ट मिल जाएगा। कमर्शियल ऑन क्वीन स्ट्रीट इन लैजलीविल एरिया, नाले रेजिडेंशियल, नाले तुसीं इहदे च लेनवे होम बना के होर इनू इनवैसटमेंट अपने बड़ी भी कर सकते हो, वो भी कॉल करनी है 6477662600। खाण पीण का समान लेना, तुसी मच्छी लेनी है, मुर्गा लेना, वैजीटेरियन समान लेना, नराते चल रहे हैं ऑब्वियसली। ग्रिल क्लब एंड मीट शॉप इन ब्रैम्पटन गोरवे दे कंट्री साइड ते 6495794800 905-794-8600। इस तो अलावा तुसी लेनी है टॉप दी ग्रॉसरी। ग्रॉसरी जदों बंदा करन जांदा ना अजकल उहदे दिमाग च सिर्फ एको गल हुंदी है कि हाय एक्सपायरी डेट तो नहीं चेंज होगी, हाय माड़ा समान तो नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, पुराना प्रोड्यूस तो नहीं मिल गया ना, दुध ताज़ा आ, सारा कुछ है, अवेलेबल है। हाँ जी, आप समान रखी दा स्टोर च लिमिटेड ता कि सोल्ड आउट हो जाए दोबारा दोबारा भरना पवे, क्योंकि फ्रैश आप अपने कस्टमर के लिए लैके आना। सो तुसी टॉप का प्रोड्यूस लेना आ, क्वालिटी प्रोड्यूस जिन्हों कहने कि देख के रूह खुश हो जाए, तो रॉयल इंडिया ग्रोसरी असीं जाना आ, 24 आवर्स ओपन है, गोरवे ते कंट्री साइड दे उत्ते अवेलेबल है। राइट, दुध लेना तुसी, सील टेस्ट लेना अवेलेबल है, नीलसन लेना अवेलेबल है। जे तुसी जर्जी गां दा या मज दा फ्रैश दुध लेना, उहदे लई भी स्टोर दे अंदर मशीन लगी है, 24 आवर्स स्टोर खुला है गोरवे ते कंट्री साइड दे उत्ते। प्राइसिंग तुहानू टॉप दी मिलनी है, क्वालिटी तुहानू टॉपम टॉप। रॉयल इंडिया ग्रोसर्स इन ब्रैम्पटन। जे तुसी लेनी है वधिया ते घेंट मिठाई तां द खोया कैफे 6474820003 6474820003 तुहानू टॉप दी मिठाई मिलनी है, इन हाउस बनी ब्रैम्पटन दे विच, बेस्ट मिल्क केक इन पूरे कैनेडा हैंड्स डाउन। आओ एक बार टेस्ट करो फिर ऑर्डर प्लेस करो 6474820003। थोड़ा ते मेरा साथ अज लई सीगा एनआई, अगले हफ्ते फिर मिलांगे 2 बजे पूरे संडे नू, उदों तक रब राखा, सत श्री अकाल।

0: ओंकार गुंडा सिंह रिपोर्टिंग सर।
1: सास्त्रीकाल गंडा सिंह जी,
0: की हाल है जी?
1: ठीक है, शुक्र है तुसी आए हो।
0: कोई शुक्र वाली केड़ी गल है, वैसे उनाली शुक्र नहीं है तो शनिवार नहीं मेरा ख्याल।
1: नहीं नहीं, शुक्र मीन्स थैंक गॉड कि तुसी आए हां।
0: अच्छा, गॉड दा थैंक करदे तुसी?
1: हां,
0: साडा नहीं करदे जेड़े आए हां।
1: ओ तुहाडा भी कर लेनी मैं अग्गे कल्पी पईयां उदों दी।
0: अच्छा जी,
1: ओ गुरप्रीत नु पता नहीं की हो गया।
0: की गल हो गई?
1: ओ पता नहीं, मेनू लगदा ओनू किते करंट करुंट लग गया।
0: चक्कर बस में मैं पढ़िया उथे जो कंडक्टर नू मतलब एक बंदे ने बोलिया एदा, ओने बोलिया जी मेनू
1: पहले ही पता लग गया।
0: मैं यार सानू भी हरेक नू श्रीमान जी कहना, मैं फिर की कर दे, मैं बस श्रीमान जी का चक ली दा।
1: मेनू एक राज दी गल पता लगी है।
2: केड़ी जी?
1: तेनू करंट लगा?
2: नहीं जी।
1: लगा या?
2: ना जी, करंट ता थाडे दुश्मना नू ना लगी जी, मैं ता कहना जी।
1: नहीं, मेनू गंडा सिंह जी दस के गए आ।
2: गंडा सिंह नू आप नू जी लगा जी, कल तेनू दस्या ना?
1: नहीं।
2: ओदी घर वाली जिहड़ी सी नाले कहंदा जी ओनू सुन नू हट गया, दिस नू हट गया जी।
1: हां
2: हां, ओने सुन लिया जी घरे सारियां गल्लां।
1: मेनू दस दे सी।
2: नहीं, बस ओने अगली गल नहीं ना दसी।
1: की?
2: बस वे भाभी ने ढा लिया जी जदों घरे गया जी।
1: ओहो, फिर ता मोर मूर चंगे सेके होने।
2: मोर ओही गल जी, ओने ना जी तारा दूरियां बन के ऐसिया ऐसिया थावा ते मारिया, कहंदी वी बस हुण ना हाई नेक कला कोट पा के जाई, बस बाकी तेरी लाशां नहीं दी दियां, मुंह ते कुछ नहीं कीता उन्हें।
1: अच्छा,
2: ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ?
1: ਹਾਂ
2: ਹਾਂ, ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਸੀ।
1: ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
2: ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
1: ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ।
2: ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਸ ਐਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਦੇ ਮਰਾਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ।
1: ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ।

0: हाँ हरमन कौरी,
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लगी है।
0: हाँ
1: तू एवं कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे,
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ मैनेज करना केड़ी केड़ी चीज ओदे विच होनी चाहीदी आ, बच्चियां ने केड़ी केड़ी चीज जेड़ी ओ फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप दे दौरान, ए सारियां चीजां नू ऑर्गेनाइज कर दे।
0: ओहो हो
1: तू बन जा,
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है?
1: हाँ
0: थर्मस चाहिए है, बैग चाहिए, दस्ताने चाहिए, कोटी। जैसे मेरी गल सुनो, एक जी काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर?
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है?
0: यार किदा दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरोगे उत्थे?
1: हेलो
0: नाले एक मिनट, हेलो एक्सक्यूज मी,
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया?
1: चंगा
0: लगा नी।
1: हेलो
0: मुक दी गल है, जे अगले मेरे को काम कराउणगे कल नूं भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे, बाद अगले पैसे ना देण, फेर कौन जिम्मेवार?
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा, बाकी गल्लां दीआं गल्लां।
2: देवतातले नूं कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उनां कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।

0: पागल सी
1: क्यों
0: ओनू मैं फोन करना उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट